0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
2: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
2: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै, अनि अझ विशेष के छ?
3: दसैँ तिहार झिलिली अफर,
1: सोफा तथा फर्निचरमा 30% सम्म छुटको व्यवस्था। 35,000 को सोफा किन्नुहोस्, 35,000 कै फ्रिज स्क्रैच कार्ड मार्फत जित्नुहोस्।
2: साथै इलेक्ट्रिक जग, राइस कुकर, हिटर लगायत आकर्षक उपहार। 10 जना भाग्यशाली ग्राहकलाई निशुल्क थाइल्यान्ड भ्रमण।
1: अनि टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब फलो गर्नेहरू मध्ये 1 जनालाई 35,000 रुपियाँको सोफा निशुल्क।
2: नेपाल भर डेलिभरी, 15 वर्षसम्मको ग्यारेन्टी।
1: थप जानकारीको लागि सोफा हब नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 97 0511 48 70।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।

0: हो मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?

0: ओहो आज डाई हो नै मजा लागत हो मजासे दवाई करे ना कहतो
1: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
1: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाए
0: ए ओसी नो कल से उहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
0: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
1: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
0: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
1: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 और 98-482-80-465

तुहार आँखी से गिरल मोती के हर दाना टरो के नहीं से कम, बस तुहार में आपन है समिया दे से कम। यदि हुई कले से तुहार सबको करिए दिन है शायद में धर के, मैं तुहार संगे जिंदगी बिताई अनुमति मागत हूं। तुहार निर्णय के अस्से में राम साइकिल वाला बंटू।

0: यामाहा ब्लू फेस्ट यही असोज 23 गते देखि असोज 31 गते सम्म यामाहा सोरुम कारखानो नेपालगञ्जमा हुने नेपालकै बिगेस्ट एक्सचेन्ज मेलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो चाड पर्वमा यामाहा सोरुममा आएर दोब्बर खुसीका साथ उत्सव मनाउनुहोस्। आफ्नो पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटर लिएर आउनुहोस्। उत्कृष्ट एक्सचेन्ज तथा फाइनान्स अफरहरूको फाइदा उठाउँदै नयाँ यामाहा तुरुन्तै घर लिएर जानुहोस्। यो एक्सचेन्ज मेलामा तपाईँले पाउने विशेष अफरहरू: साधन खरिद गर्नु अघि नै घरबाटै दर्ता गर्नुहोस् र 1,00,000 रुपियाँसम्म जित्ने मौका पाउनुहोस्। यामाहा खरिद गर्ने भेरिफाई गर्नुहोस् र 10,00,000 रुपियाँसम्म जित्ने मौका पाउनुहोस्। त्यस्तै हरेक हप्ता हाइटेक ग्याजेटहरू र बम्पर प्राइज अन्तर्गत यामाहा R15 जित्ने मौका प्राप्त गर्नुहोस्। यति मात्रै कहाँ हो र तपाईँको पुरानो साधनको ग्यारेन्टीका साथ अधिकतम मूल्याङ्कन पाउनुहोस्। तपाईँको कुनै पनि पुरानो साधनको मिनिमम भ्यालुएसन 50,000 रुपियाँ र एडिसनल भ्यालुएसन 8,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहोस्। अनि यामाहा लैजाउँ घरमा नागरिकताकै भरमा। हजुर, बिना कुनै झन्झटिलो कागजात मात्र नागरिकताको आधारमा अन द स्पट सजिलो फाइनान्स सुविधा उपलब्ध छ। यामाहा चंगा छे, जितको नयाँ अपग्रेड। यामाहाको खरिदमा 10,00,000 रुपियाँसम्म जित्ने मौका नगुमाउनुहोस्। यस्तो मेगा एक्सचेन्ज न पहिला कहिले आएको थियो न छिट्टै आउनेछ। त्यसैले नेपाल टेलिकम बिल्डिङ नजिक कारखानो नेपालगञ्जमा रहेको यामाहा सोरुम भिजिट गर्नुहोस्। हाइटेक 2-व्हीलरमा अपग्रेड गरी आफ्नो दशैंलाई साँच्चीकै अविस्मरणीय बनाउनुहोस्। अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97090038739 र 97045998921। यामाहा ब्लू फेस्ट नेपाल्स बिगेस्ट एक्सचेन्ज इभेन्ट यही असोज 23 गतेदेखि असोज 31 गतेसम्म यामाहा सोरुम कारकाँदो नेपालगञ्जमा।
1: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो। मजासे दवाई करेला कहटु।
2: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न। पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
1: ए बाट ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
2: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
1: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र जाइ न। वहाँ अनुभवी चिकित्सा को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत। वोत्रकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ती रहना, जीर्ण रोग, काने धूसी, कान खजुइना, कान कम सुनना, कान दम्म हुइना बिरामी के उपचार ओ परामर्श। वो लंबा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल, कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार फे हुई। वकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगैना ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते BTE, CIC, RIC सेवा वहाँ मिला।
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो, वहाँ ले जाके उपचार करेल से वजह से सुनो से कही ट।
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। सम्पर्क नम्बर 98-84-20-697, 98-85-23-697 ओ 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
1: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, परसुती व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा।
1: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
2: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98239806 वो 98482804465।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
0: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465।
3: अब मूड़ और नस संबंधी रोग के खातिर लखनऊ न जाए पड़ी, आपके अपने शहर बहराइच में यहाँ अब विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है। माँ पीतम्बरा ब्रेन स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां पर यहां उपचार के खातिर उपलब्ध हैं लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर, जहां पर यहां बीमार लोगों के उपचार के खातिर लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिवम ए मदेसिया से सहूलियत दर में यहां उपचार सेवा पावा जा सका जाते है।
4: हमरे यहां मुड़े चोट, मुड़े हड्डी के फ्रैक्चर, दिमाग के नस फटे समस्या, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफलास यानी कि मुड़े में पानी की चमक समस्या, दिमागी बुखार, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसे चेहरा में यहाँ दर्द, रीढ़ के हड्डी में यहाँ ट्यूमर, TB, रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर के दूरबीन से ऑपरेशन, कमर दर्द, हाथ पैर में यहाँ झनझनाहट, हाथ पाँव में यहाँ सूजन, नस सटका, गटई में यहाँ अकड़न, रीढ़ में यहाँ जनमिन से भावा घाव के उपचार होते है।
3: ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा केयर, न्यूरो क्रिटिकल केयर और 24 घंटा इमरजेंसी के सेवा उपलब्ध है। ऐसन श्याम डायग्नोस्टिक से रोग जांचे गुणस्तरीय सेवा समेत उपलब्ध है।
4: स्थान अस्पताल रोड V2 मल के सामने बहराइच, आज संपर्क किया जाए। संपर्क नंबर +91 911-844-2021 और +91 99192211। ऐसन नेपाली नंबर 9769249329। ऊपर के दिया नंबर में यहाँ व्हाट्सएप से भी मैसेज और फोन कई सका जाता है।
5: के तपाईलाई आफ्नो

0: अब मशीन कहाँ से नन्ना हो
1: छी दादू फे ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स
0: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू
1: उहा त अनमोल उषा ओ ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री ओ मरम्मत कई जी था एकरक संग संग मशीन संबंधी सबकु पार्ट पुर्जा ओ सामान फे पाजी था अट्रगेल कहाँ हो कुशल कारीगर हुकन से मरम्मत फे कराजी था
2: एकक संगे दस्या देवारी हो छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा
0: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार मोबाइल नंबर बा 98481-28318 और नंबर बा 98224-52478 एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी
3: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
3: सोफा किन्न कहाँ जाने, राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
2: नेपालकै नम्बर 1 सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
3: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
2: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
3: ए साँच्चै, अनि अझ विशेष के छ?

0: हमका ब्याह के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है। कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताए दो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथे टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथे आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
1: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254 98085 40

है एक ऐसी बांझन की जो माता वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। समय बीतता गया, वो बड़ी हुई, उसे सुंदर वर और घर मिला। वो नित्य माता का पूजन पाठ किया करती थी, परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। घर वाले बाहर वाले उसे बांझ कह कह के चिढ़ाते थे, उसे हीन भावना से देखते थे। वो रोती तड़पती माँ से फरियाद करती। एक दिन वो माता वैष्णो के दर्शन के लिए जम्मू गई, माँ की चौखट पे माथा टेक के रोने लगी। उसकी करुण पुकार महामाई ने सुनी और ठीक 10 महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। खुशियां ही खुशियां आईं। एक दिन ऐसा हुआ, कहते हैं दोस्तों उल्टा समय आने में देर नहीं लगती। एक दिन रोती बिलखती हुई जिस माँ ने उसके खुशियां झोली में भरी, आज वही बिलख कर गोदी में बेटा लिए उस माँ भवानी को, माँ वैष्णो को पुकार रही है। आइए सुनते हैं सारी कहानी इस भजन के माध्यम से।

0: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
1: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
0: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
1: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
0: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
1: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
0: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान से कम सुनने वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
4: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
5: Back to back, back to back.
6: In this song, on
5: stay tuned.

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफरदेखि आकर्षक उपहारसम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?

0: छ साथी खबर निकै खुशी देखिन्छौ त के काम गर्दैछौ आजकल तिम्रो जीवन त खुशी छ नि
1: काम पनि राम्रै छ दाम पनि टन्नै छ साथी प्रभु महालक्ष्मीको अभिकर्ता बनेर मन त सारै प्रसन्न छ
0: वा साथी सेवा सँगै मेवा मिल्ने क्या गजबको प्रगति
1: धन सँगै इज्जत पनि कमाइने अभिकर्ता बनेर भविष्य पनि बनाइने सेवामा सम्मान पेसामा गर्व ढुकढुक होइन ढुक कहौ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनौ
2: और न संबंधी रोग के खातिर लखनऊ न जाए पड़ी आपके अपने शहर बहराइच में यहाँ अब विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है माँ पीतम्बरा ब्रेन स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर जहाँ पर यहाँ उपचार के खातिर उपलब्ध है लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर जहाँ पर यहाँ बीमार लोगन के उपचार के खातिर लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिवम ए मदेसिया से सहूलियत दर में यहाँ उपचार सेवा पावा जा सका जाते
3: हमरे यहाँ मुड़े चोट मुड़े हड्डी के फ्रैक्चर दिमाग के नस फटे समस्या ब्रेन ट्यूमर हाइड्रोसेफलास यानी कि मुड़े में पानी की चमक समस्या दिमागी बुखार माइग्रेन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसे चेहरा में यहाँ दर्द रीढ़ के हड्डी में यहाँ ट्यूमर टीबी रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर के दूरबीन से ऑपरेशन कमर दर्द हाथ पैर में यहाँ झनझनाहट हाथ पाँव में यहाँ सूजन नस सटका गटई में यहाँ अकड़न रीढ़ में यहाँ जनमिन से भावा घाव के उपचार होते है
2: ब्रेन सर्जरी स्पाइन सर्जरी ट्रॉमा केयर न्यूरो क्रिटिकल केयर और 24 घंटा इमरजेंसी के सेवा उपलब्ध है ऐसन श्याम डायग्नोस्टिक से रोग जांचक गुणस्तरीय सेवा समेत उपलब्ध है
3: स्थान अस्पताल रोड भीटू मल के सामने बहराइच आज संपर्क किया जाए संपर्क नंबर +91 911 844 2021 और +91 99192211 ऐसन नेपाली नंबर 9769249329 ऊपर के दिया नंबर में यहाँ व्हाट्सएप से भी मैसेज और फोन कई सका जाता है
4: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है। कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
1: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: Back to back, back to back. In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: 24 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुली बर जियौ
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी